0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति नेवा नशा तो सया सत्ता सभा क्या
0: नेवा लहना रेस्टोरेंट हाँ बहा किपू
1: नेवा सभ्यताया जीवन तब खुला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य स्वामी
2: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: Kajaria Tiles, your world class luxury.
5: नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिडिया प्रालय नेवा भाषा साहित्य वा संस्कृति नेवा एफएम 106.6 निना दिसा निका दिसा

0: सामाजिक सञ्जालले बालक बुझे याना जग बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग फलो याना दिस सुन लिंक च्याकेन्य वो छुकीय नीति ख सुना छयागु ख वो गनवनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुन खे थया त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।
2: धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा नाप सार्वजनिक स्थल त सिचु पिचु याना किपुया पर्यटन प्रबन्धन अभियानले सकसिन ग्वालियर दिस किपु नगरपालिका दुईवटा जागु देवढोका किपु।

जोजोलपा जिम्यालामी पूर्णमान महर्जन छिसङ निना चोना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिस नेङ्का दिस नेवा जुयागु गर्व याना दिस।

0: क्या विवरण मिलो दासा खाता देबो वही हो
1: से बा सीसा लॉटरी भए ना डियागुला
2: मधु छाठे मुइचा लॉटरी लागुला बा लागु ए खनी
1: परे महिना गु लॉटरी गठिना लाइले बा छुजागु मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गनना होला दासा विश्वास याने डिमचे फोने वसा ठगु विवरण गबले बिमचे सुन वित्तीय संस्था छिगु पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काइमको ठोला बैंक हेन काइम
3: सतर्क जदिस थाली पाके बचे जदिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाके जनहित जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

तुयु फाले क्याउ सिनारे जोजो लपा जी राजेश महाजन नेवा छि नेना चुना दिगुदु नेपाया गौरव नेवा मसिका नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेंगा दिसा।

0: मठ मन्दिर पार्टी पौवाहरू हाम्रो पहिचान र पुर्खाका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। स्वच्छ सफा राखी त्यसको जगेर्ना गरौँ। किर्तिपुर नगरपालिका 2 वटा कार्यालय देवढोका किर्तिपुर।
1: अले फुक्क भया जटा सिडल्ला
2: अ सिरी ढुंकल
1: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याजा खुठी वना ब्लक याना वेठन
1: अले बैंकेले
2: बुइंके
1: खटया
2: अनसा या मालले
1: ओला या माहुने ठगु मोबाइल नम्बर हिलाबुला वा ब्लक जोगु बैंक यातना जानकारी बियादिस अले ठगु बैंक खटया जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस ठगी।

0: बजार क्षेत्रमा पोहर जथाभावी नफालौ, डस्टबिनमा फालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दियौ। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर,
1: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।
2: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
4: Kajaria Tiles, your world class luxury।
5: साहित्य ओ संस्कृति निवास निवा एफएम 106.6
6: नकाली कान्छीको खुबै राम्रो लजाउने बानी
5: जो लपा जी मियालामी रोशन साथी।

इफेन सचिव खोप दिखो मेगासा शुक्रवार पति को निनस्या पेटा इनसे न्याता इतक का जना रे फैगो जादो ख हेलो नेवा पंचक्वा जी नरस छतमी इसे पंचक्वा छी है खागु दुजो नेवा दी पे गठे की चीना ख खाली ख ख्याल वा हाइकु चिबा ख प्यारोडी में नेवा दी पे लुमंक न्याना दिशा शुक्रवार पति का निन

0: ला सो फ्याफुल्ला जिमेगु तो लोसार पर्वे जाय दिगुली यको यको लास्कुस दु नांगलन रंगलन इस्तसे ने वासेन जुनो तो जेनी चु लोसार पर्वे नांगलन हिन्नानी
1: खनी अठो छि पर्वला खनी अ मखला बुरा अ खय डामल
2: ने आ वो दुने आ जिमौना जात्रा होई आ छिकपिना ठेक जायमलगा हला
0: ख जामल ने अ मुला मुला मुला मुला
1: मुला मुला का होय होय नी सटा दिसाले अ

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति
0: नेवा लहना रेस्टुरेन्ट थाबहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसाजा सानी
2: जोजो लपा जी वैकुण्ठ महेन्द्र म्याराथन कासा झी नेवा टेगो छबु जकस्स नेवा एफएम 106.6 नेपाल भाषा एकै

मिडिया नीति अनक मिडिया या न्यौ भो या नेवा एफएम 106 पपला 6 मेगाहर्ज नेना दिस नेंका दिस नेना चुना जीवन सीता शुभ।

0: प्रो एप तपाईका लागि सधैं सजिलो सबै सजिलो तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ
1: तले फुक्क भया जटा सिडला
2: अ सिरे ढुंकल
1: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानाला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम याजा खुठी वना ब्लक याना वेदन
1: तले बैंकेले
2: बुइंके
1: खटया
2: अनछा या मालले
1: ओला या माहुने ठगु मोबाइल नम्बर हिलाबुला वा ब्लक जोगु बैंक यातना जानकारी बियादिस अले ठगु बैंक खाता या जानकारी मेपनीगु लाटे छनीगु पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस
1: ठगी पाखे बचे जुयादिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
0: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
3: जोजुलोपा नमस्ते नेपाल भाषा एकेडेमीया नीति अनक मिडिया या नेबोया भाषा साहित्य वा संस्कृति सँग नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो निर्णय दिशा निङ्का दिशा जी हरिवंश आचार्य शुभ

0: हाम्रो पातो जोड्छ नेपालीलाई।
1: बैंक गुब्ले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ को पे विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिसा वो छि त ठगे या त सनाचो मुदो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याई म हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिसा उमेगु विवरण कया बैंक जना दिसा सतर्क जुया दिसा ठगी पाखे बचे जुया दिसा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: आयाक ना है जी छेक पिंता जानकारी
1: हाँ
0: ना आयाक ना है जी ला छेर करे ला उखनो सुना देखी उखा वे का चाहिए संपर्क के मरे आचों उखा ला वे का पिनेर का टाइप वो जानकारी जग बोला वे का या फोन चाहिए मेम पिंचे कया तेर उनको जुला ला वो चाहिए और जा चाहिए पिनेर का टाइप जानकारी चाहिए वो जुला आ चाहिए ठुक वे रंगो जुला ला सोनी गले डू वे का सन सोनी गले चाहिए दी रंगो जुला वो जा चाहिए आयाक ना है जी देखो आसा बोला सके हजुर
1: अले जसु छौ ध्या मसुरा त आथङले अयो नसा खुसी बा ओया त्या मन्त्र गयो कष्ट जे चौँदो होला जी दुःख जे चौँदो घुमा स्यान छे मरिया चौँदो घुमा स्यान पो घटना त तोला चौँ चौँपिन दुह आला हजुर अयो निना त धुला मल्ला म यो बोतले बोतल सिका हल अले वो बोतले त्या वो ल तल अले वो ल त्या त्या भतिजा कोसना हो नि नि वो ल तोला मन चौँपिन दुह छ आ भुलि कास्ती बरु सी पनि त्यहाँ आनन्द सिए सित अम्मा पनि त्यहाँ गयो कष्ट भुलि आठ काओ मखनी ला बिलो ला सु बिलो आउ मनो डोला मर्ला खला मखला एपिन त्यहाँ खुसी धुने न लान्छला अयो यो झन्डो होला एम त न याक्लै उधार जुमा बास यामा वसै बास याना चाहिँ याक्लो लनी मार्यो त्यहाँ छिउ काम न या आठौँ त्यहाँ भयो खुवासेली आ किसान चाहिँ बानाको छोरा छक्कलको याना घाउ मुखो छि म शीतले या माने मङ्ला यो दत्तलेला बामा कि छ दत्तले यात्मै सान चाहिँ दक्षिण यामा अघि उताउल छोटा या मते मङ्ला ठिक्कै रहेछ थ सुख ठाउँ झि सुख जुल कने सुख जी मको सुख जो चाहिँ पे किसान लोमङ्की होला आ जिजको ठाउँ सुख इमी गुली दुख जुल जे फे थियो त्यहाँ घमारे ना सौ एक किलो या आसेका चौ एक किलो आसे वो अलि नास्पाती रहेपट्टि तुईपट्टि तट ऊ भागे भाँडा छ पासिया सच्ची सच्ची अयो चिज त्यहाँ खिसन याप्पै हस हान मगा पल्ख लिपा अलि क्या ढाल्के ऊ सामान मरिया भने हो गुलिम मन्त दट गुलिम मन्त त्यहाँ नेमाओ गुलिम मन्त त्यहाँ नेमाओ मलाई अयो यो टकन छिस त्यहाँ अलि याक्को हसा मगा त याक्को हसा मगा त ए जुन चाहिँ खिसन चाहिँ पछि त सिके माथेछ त छिके चिज यो कोन ल्याउ मको तिमी ढोकिका छ स्याङका छ म खिसन न्याउ मको खिसन चाहिँ प्रतिज्ञा खिसन छाइ या मुक्त होला ओ ए या सारी या ए प्रतिभाषण ठिकै या मजु त आजको मको ठिकै जियो दे पछि भनी स्व दस बजे त पस तै ओ फुक्का हो नि हेर्छ होला ए न त्यहाँ मन त का मरिया छु नि घर नि आ केरा तेमा हँ खाजा मारे तेमा आ सिपसँग वन नै लाले माथि डुब्ने डुब्ले चाहिँ छुछु यो वा मरियो चुनि पाखेना चुनि हरेक चिज त्यहाँ थ भोपिन्द मामपिन्द छुज्यो खो त्यहाँ त्यहाँदेखि छपेन्नको तल छ मन सुवासी बिउ त हिजो लगे जी
0: अवश्य।

0: 啊，我西东的托爹妈，我爹妈哈，不拉不拉个，哦豁，转妈来冲，啊，哦豁，你是哪边了？边了？记住，破掉了破烂都哦那样，我那样那么朋友了，这样干嘛干嘛朋友了？别那样么就了你，我头也爹妈，腿也爹妈了，出也么了，怎么呢？说你写呢？说导演呢？就算男不女也到啥啥？我听西边那老人，你到那随便打嘴，好啦。哎，就你一过我到路，也没得阿姨，还能在 Facebook 做一点个，他到了我到了太太嘛，我对嘛，忘到了我也没了，忘到了我也没了啦。你初中在伢不能安住的呀？一过我到了呢，也没得，没呀呢，没得，就你好说呀，什么呀，有这样那个，我也个就干不那个。
1: हजुर यो केको सुविधा दिशा चाहिँ वेक ख किसन सुरे साके जुकी लाग यहाँ पाखे फोन ना दिगु ल वेक न थ नो ख न तयारी गु ल अवश्य न ख वेक न दै दिथे चीसो दुबले हे नके मा बाय त गुबले न खुएके मते मा बा दुबले हे चीसो न्युवच न्युवच जा छपे जक न कोसान सुथे छक बने छक जक जा क्वाउ जा ने दत नक फलतत गाटा आसन तस्क पुन्ने जी जान्यु वच ने मखना हे मा बापी खया चौन खना छिन खजी मा सायद क्या म्यापेन छ मा बाए त वास्ते मयासी मा बा हे याकजुजीका थम ठिया ने माला चौ अवस्था तकन खना चुना अले वेकअपी मा बापी खया खया जे बेकारे मस्ती उनिटी ठुलमसी नाप मचा बोले चाहिँ सिधका चाहिँ गुली बिचायना गठेना चाहिँ माका बोलङ्का चाहिँ आतर गजिया इपी बलाबले कमै बलाबले मा बाप त वास्तव मयासी जुलधैको खोया चोपिन खना अथि थौ विशेषना बाया ख्वासेको दि माया ख्वासेको दि बाया ख्वासेको दि छनु जग्गा मा बाया त लुमङ्केको मुख मा बाया त थियो चिसा सदा सदा लुमङ्केमा अले मा बाए त न्याप्ले हे इले हे जान्यु अच थुया जग नख पट्टा सान तस कहे वेकअप नुगो सुवा लगेजी वो ज्या मा बाए त दुपिनी आ दनिपी मा बाप त चाहिँ दुपिन्छ चाहिँ बालक बिचाएन दिस तासे अठे टुई ठौ गुलिन फेसबुक देखे मा एक ख्वासे बा एक ख्वासे किपा त तै फेसबुके चोई थो छौ छन् जग ते मते न्याप्ले न्याप्ले तयारी छ जी थोए तया चुना डुबले खचिस सेवा यागो महाभाया त लुमकी उठेको मरे रुङ्का चिस थो आज सेवा या मगानी त्यहाँ सेवा या खने मख अठे हे थौ कुलिन किपा त फेसबुके तै फेसबुके वै वो मा बापी गुब्लेन वृद्ध समय मखनेमा थोहे काम नायना सकेस्या त इनाप नयाना चुना जी लिम्ला जियोको बिजी ज्याडो अलि देवयको देवयको दुर्गा चाहिँ मा बाई त बिर्दा समय ते अलि जी देवा फुले घा चाहिँ यहाँबाट सुयाना सुनाना यहाँबाट नापचना दिशा मा बा ठौकने सक्ले विदेशी हुने प्रचलन योको अपया चौँदो वो ज्या विदेशी हुने अलि मा बा या कच थन्जी अले वो हे मा बापी छु ज्या मद्द आशा न क्याम ह्यापी वे मा बाए त लटुङ्की तकन थो सेवा यागो प्राप्त जी मखोला ऊ यी तकन छारकरालाई इले वे खाने मुख विदेशी जीवले तर देवनया छुया मा बाहे मरे रुङ्गा तासे थौ बाया ख्वासे उदी सकल दनिपी बा पिन्त पिन्टुना देसाना चुना अले तासे आ पल्ख डिपा एटेल लगा ध्यारी प्रारूप ला वो ज्या चाहिँ पल्ख डिपा क्याएको चाहिँ डिपा रङ्गा आफ्ना छिलिसे खला बनाएर वेगोजी यहाँ चुना देशा नेवा एफएम छ छेउ खोप्टी खोमेगा चाहिँ फोन नाचुना देशा 4:33:42:22 छ
2: सिद्धार्थ बैंक पाखे जन हित जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति नेवा नशा तो सया सत्ता सभा क्या
0: नेवा लहना रेस्टोरेंट खा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन तब खुला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी
2: बजार व्यवस्थापन समाज निवा एक सौ छ पॉइंट छ।

0: कि जित छ यगु खसा नेवा नुगदे कि नेवा नुगदे कि
1: जोजलपा जिम्यालामी पूर्णमान महर्जन छिसा निना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिसा नेंका जिसा नेवा जुयागु गर्व याना जिसा।

0: नेवार लहना नेपालीय तिसाख नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति महसिकेटा नेवा नसा तुसाया सक्ता सभाक्याटा
0: नेवार लहना ड्रेस्टुरे हा बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवंत व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवार लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी अपील अपील अपील सड़क पिटी।

0: Television.
1: अले फुक्क भया जटा सिडरला
2: अ सिरी ढुंकल
1: छंगो पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक यानला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनो हे टेलिकम याज्या खुठी वना ब्लक याना वेट न
1: अले बैंकेले
2: बैंके
1: खटया
2: अनछा या मालले
1: वला या माहुने थौगु मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक याता न जानकारी बियादिस अले थौगु बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचे जुयादिस
2: सतर्क जुयादिस ठगी पाखे बचे जुयादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी छन्
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: थो सर्गते बखुसी बे

0: ne wan na kana restaurant ha ba ha kipu
1: निवास सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवाल महाना
1: छक अवश्य दुसा जासानी।

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति नेवा
0: लहना ग्रेस्टुरे बहा किपु
1: नेवा सभ्यताया जीवन्त व खुल्ला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसाजासानी

0: बन गेलो धासा खाता दे बबो यो
1: से बा सिसा लटरी भए न डियागुला
2: मधु छाठे मुइचा लटरी लागुला बा लागु ए खनी
1: परे महिनागु लटरी गठिना लाइले बा थुसागु मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक फाइबर गनन होला धासा विश्वास याने दिमटे फोनि बसा थगु विवरण गबले बिमटे सुन वित्तीय संस्था छिगु पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काइमको ठोला बैंक हे न काइमको
3: सतर्क जदिस थाली पाके बचे जदिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाके जनहित जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
5: सकल चे नेवा स नेपाल भाषा एकेडेमी पाखे अनक मिडिया प्रारिया नेवया नेवा एफ

0: 96.6 24 घंटा प्रसारण दिया जंगुडु नापं newafm.com.np लॉग याना दिसं हमरो पात्रो पाखे इंटरनेट या माध्यम विश्व या गुगुन थासे निना दिफ
1: जी पाम जोसे संकीपा चौमी सेनानी सुबह।

ठी कथा यदै गुपी दया दया लई गुपी पाला पाला लई तर जुगु छेन लफुल गजब निक्ति निक्ति खेन लपुजे छुनी तर लफल मुखु एरगा मामले न मुखु जुगु छेथे छिक्लु।

0: बजार क्षेत्रमा फोहोर जथाभावी नफालौं, डस्टबिनमा फालौं, सभ्य नागरिकको परिचय दियौं। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर,
1: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।
2: ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज, नेवा FM 106.6।

जजलपा नेपाल भाषा एकेडेमी एनईटी अनक मिडिया एनए भया नेवा एफएम सच्यो खु फुटे खु मेघास ठौ नेपाल सम्भ झिन्छ पियु खुद गोलागा नवमी तिथि अथे विक्रम सम्भ 2083 साल भाद्र 20 गते शनिबार दिशा न्यायगु बाहन दबु ज्याजुले झिरिना महर्जन पाखे लसुकु सदु छि बाहन दबु ज्याजुले ठिठी बाहन निनाजी भई ठौजी निस्तानन्द बजाचार्य ज्यू पाखे भाषा अनुवाद याना डेगु मिनबहादुर साकी ज्यू पाखे सम्पादन याना डेगु बौद्ध ग्रन्थमाला सफु पाखे ललित विस्तार सूत्र यागु बाह कनेटना गुडु ठो सफु जिता पाजु हिरारन्न बजाचार्य ज्यू पाखे बिहा ग्वालेना डेगु ख ठौजी देव दत्त कामलो भन्मत परिवर्त बाह कनेटना गुडु बाह पोङ याना डिस ओम नमम सर्वबुद्ध बोधिसत्वे सकल बोधि सकल बुद्ध बोधिपिण्ड नमस्कार पुनर्वार श्री भगवान आज्ञा दिएका विजात हे पिसुगणपी थनली सुधोधन महाराजाय किजा किजायका दुष्ट कपटना चोम देवदत्त राजकुमार सुधोधन महाराजा परलोक वनि जी राजा राजा जुगु जुलथका मती अत्यन्त हर्षमान याना जुगु बेलस ठुमा पापिस्त देवदत्त यशोधरा गर्भवती जुलथका तागु समाचार याना अहङ्कार याना ताल गठे धासा जी शत्रु सर्वार्थ सिद्धकुमा भाग्य मर्या मूर्ख जुया राज्य भोग्या गु तोटा पिछु ज्या पिछफना आहार याना सोन थचिगु त्रिभुवनेश दुर्लभ जुया चोङ्गु चक्रवर्ती राजा जुया ऐश्वर्य भोग यागु मानदान दको तोटा कर्पिङ्के हेला जुक बोध ज्ञान ल्याटका लोकपिन्त एका अर्धरात्रिस विष्युमन थोट सुना माने याई सर्वनाश जी पिछुचर्या राज्य प्रस्त जुल कुलनाश जुल मेता मूर्ख जीगु भाग्य जुगु जी शत्रु सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार राज्य चोङ्गु जुसा जित सुख जी मको गुखुनु बने वना सुधा कर्म याटो उखनु जी स्वर्गीय मरुगु जुसा स्वर्गीय मरुगु सुख भोग प्राप्त जुल थय कला अज्ञानी जुया चोम यशोधरा गर्भवती जुलत जुलतका ताल खला मखुला नापा रङ्गभूमि स वना बोले जित भजना भजनायाथका तया ठो माने मजो अभागिनी जुया निन्ति भिक्षुक याट पठिथका वर्णन याट ठोया पुत्र जन्म जुए जी राजा जुई मगो सुधोधन महाराजा छेचायात राज्य बिगु जी सोया चोने माली राज्य भोग या मरेको सुख जुई मगो राज्य भोग या गु कामना या कामना यत्न जत्न या मालथका मती तया चोङ्गु बेलस देवदत्त या मती यत्न उत्पत्ति जुया वल गठे ढासा यशोधरा या बहु दण्डवानी राजा यत अमूल्य रत्न यागु माला न्यने तया यशोधरा कन्यादान फङ्के छे जिता धका त्याहु थया बहु दण्डपानी राजा खुसी जुया थ पुत्री यशोधरा यागु यौवन व्यर्थ जी थका जिता विवाह एना बिए यशोधरा एन जिके हेगु इच्छा डो इच्छा दया छुया सुधोधन महाराजा तमेकी थका ज्ञाना जी शत्रु सर्वार्थ सिद्ध कुमार याट वर्णना याट दण्डपानी राजा जिता हे बी थका इच्छा एना चल छुया राजा यागु भय ज्ञाना विवाह यागु इच्छा मरुम सर्वार्थ सिद्ध या त विवाह याना बिल थौ जी बिन्तिया के छोट थासा तुरन्त बि यशोधरा न काम दग्ध जुएका चन जी जग वाधका धासा तुरन्त वै गठे धासा ल टोनि गु इच्छा एना चोम या त ल प्राप्त जु थिए तृष्णा पूर्ण जुए जी गुहुनु राजाजी उखुनु जी कलापी मध्य मुख्यमा महारानी याना ते कदाचित यशोधराय पुत्र राजा जुलतासा राज्य भोग यागु सुख जित दैमखो अथिया कारणे दण्डवानी राजा यत दुत छया यशोधरा फङ्के छुया थका मती तया धर्मदत्त तैम पासा यत सत्के छया एकान्त सचना दाल हे धर्मदत्त जी छन्त हित जुगु विश्वास यागु खौ धाया च्याना
कार्यसित मजुतले गोपी एनाटे सुयात न कनिमटे सुदासा सुदोधन महाराजा स्वर्ग जुए व जी राजा जुए जी राजा जुए व छन्त मुख्यम मन्त्री यानाभ्ये जी धैगु ज्याछौ छ यानाभ्यो सुदासा जी छन्त अलङ्कार तिसावस बिया छु छवना दण्डपानी राजाया न्यन्यतया बिन्तिया छल पलय पुत्री यशोधरा काम आतुर ज्याचन देवदत्त कुमार यत विवाह याना बिजाउ छल पलय पुत्री नव तरुणी तिनी काम दहादि दुख दुख गथे सहे नाचने अभागी सर्वार्थ सिद्ध काम भोग राज्य भोग यागु दको टोटा सुधा कर्म या ढुङ्कल राज्य ल्याउ मक्ट उन्मत्ता ज्या शमसानी बनी पर्वते सक्पन चा चा उलाजुल ठयट ट्यागेना सक्ल विद्या पारङ्गत ज्या चोम देवदत्त कुमार यात बिया बिजाउ सुदर्धन महाराजा परलोक जुए व देवदत्त कुमार राजा जुए ठो राजा जुए व छल पोलय पुत्री बडा महारानी जुए ठो समान पाग्यमानी सुदै महो अठिया कारणे छल पोलय पुत्री यशोधरमया देवदत्त राजकुमार यात बिया बिजाउ तका टिसावस तको न्यन्यतया बिन्त्याट छङ्गु बिन्तिन्याना दण्ड दण्डपानी राजा खुसी ज्या याक्न बिहाए दण्डपानी बिहा हो म यशोधरायाट बना छ याक्न वा हे धर्मदत्त याक्न हु विलम्ब या मते भाइ इष्टमित्र पिन्छ यानाजीको मनोरथ याक्न पुर्याना ब्योधका ठुली दया असङ्ख्य मूल्यवान चङ्गु मोती यागु माला आदि अलङ्कार न्यानतया बिल थचे देवदत्त मोती मोतियामाला आदि अलङ्कार न्यानतया धागु धर्मदत्त न्याना न्याप न्यापा पाचिना मती चिन्तना हेट ओहो आश्चर्य ठुकुमार सुख लाट निने नाप पाप अधर्म बाकी निना गुली नरकसँग बास लाइथका ज्ञाना मिखा खोबित मिखासँग खोबितया बिन्तियाट ए राजकुमार छल पल सुख लाना बिजाना नीतिशास्त्रे छु धया तल लुमङ्का बिजाउ निने नाप पाप लागु अबाच्य खलाना बिजाट जी छल पलय चाकर ज्या हित जुगो अहित जुगो कार्य दको परिचय नाचना ठुगु ज्या छटा छल पल याना बिजा मते छल पलया त हित जुगु बाक्य बिन्ती या न्याना बिजाउ हे राजकुमार संसारे सचिम सचिसँग छम सुरोदय दोचिसँग छम पण्डित दै चिडोलसँग छम दाता दै भक्ता जा झिन चिडोले छम दै चिडोले छम न दै कि मै जिजा छल पल या त हित जिगु ख बिन्च्याना छल पल कामसँग लोभ तया लोके विरोध जिगु जाइना बिजा मटे छल पलय पासपिङ्के न्याना बिजाउ पिङ्गु ज्या जोसा या कि मभिङ्गु ज्या जोसा या कि महो गति उदाही पुरोहित छल पलय दाजु सर्वार्थसित राजकुमार या त जिगु ज्या याका मजिगु ज्या तोटका चन छल पल विचार याना बिजाउ विवेक मधु म मालिक जुई महो अथिया कारणे जिगु हित वाक्य न्याना बिजाउ ठुगु खता लाना बिजा मटे नियमसित पाप लामसित पाप लाइदका तथागत पिन्स आज्ञा दिएका बिजाट थौ छल पल अज्ञान छल पल आज्ञा दिएका बिजाट जी नेने ठुन निमेसित पाप लाट ठुगु पाप फुके त धर्म कर्म या माल हे देवदत्त छल पल यगु चित्त गथे ब्रह्मजुल गथे थथ्य खलाना धर्म नस्त मजुला नरक यागु भे मडुला लोक अबाट मयैला राजा दण्ड मयैला ठुगु जैना छल पल चिरञ्जीवी ज्या सदा राजा यागु सुख भोग या दैला यागु या जुसा पाप कर्म दैगु या मट्य छल पल जा काम अन्दाज या राग द्वेष माया मोह
काम क्रोध दक्ख दोहटा ज्ञान गुण जग इच्छाइना पतिव्रत धर्मसँग बिजना चोम यसो धरा जेबिया त अप्याचो खलाटो छल पोलय लो मनला नापा यसो धरा रङ्गभूमिसँग बिजना खुइपेता विद्या सुना ट्याके फट उमजी पुरुष थका जे पताका जनाचोन थथिम यसो धरा छल पोलयके गजे पजनाय छल पोल जा काम रागा काम रागसँग अन्दाजुया त्यो मट्यो धैगु छु विचार मयासे दाजुया त उन्मत्ताजुया बने शमसाने जङ्गले बासना जुलो थका आज्ञा डेका बिजाट होस पोल जा उन्मत्ता मजु छल पोल जग राज्य लोप तया कामी अन्दाजुया पतिव्रत धर्मसँग बिजाना चोम तटाजु नाप काम भोग या थका उन्मत्ताजुया बिजाट छल पोलय दाजुजा बोध ज्ञान लाना लोकपिन्त उद्धार या थका तपवन बिजाट छन्दक बिन्ती आगु छल पोल मन्यनाला सुधका बिन्ती आट राजकुमार सकल प्रजापिन्त रक्षा या निन्ती याप्न लिया विजय तका बिन्ती आट मखुला गठी लोमन जिके जा लोमनी थुगु अवाच्य ख ला लाना गो पाप शीतल लाट ठुगो पाप फुके त छल पल जित जिन वस पल यागु सेवा यागु योग्य ठुगु कर्म छता याना विजया मध्य बरु प्राण त्याग यागु असल कुकर्म याना माना चुनिगु असल मजो ठुगु कार्य स दण्ड पानी राजा था स जे ओनिमुखु बरु छल पल यागु लाट घाटक याका प्राण त्याग याना यमलोक भने हे प्रभु छल पल विचार याना बिजाऊ सदा भोग या मुडुगु राज्य दया छुया त्या दयान छुया ठ म यानागु पाप थ नाप लिउ लिउ वै गन गन घोर दुःख जी जुगु स्थान दया चन अन अन यङ्का तया भे हे राजकुमार छल पलय दाजु सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार राज्य पक्ष दुर्बल पाप पक्ष बलवान राज्य परिवार तक्व अस्थिर सदा भोग्या मरु थका सिका धर्म लायगु कामना ज्ञाना तपवन बिजाट थठिम दाजु या कला ग्रहण या थका इच्छाइना बिजाट ठिक्का ठिक्कार हे देवदत्त छल पलय बुद्धि थका निन्दायना लिपा सुसु जुइतिनी खे थका मती आकुल व्याकुल जीका मलिन मुख्याना कोच्छु नाचन ठनली दुष्ट देवदत्त धर्मदत्त यागु वचन याना जिगु जा सुनान याना बिमखु विलम्ब जग जी जिगु कार्य सिथायगनि जित छुयाल लज्जा शास्त्र धैतगुदु अमूल्य रत्न ल्या त लज्जा शरम तोटे मा थका दया तल यसो धरा याके नेगु गुण रूपी रत्न डो थोयाट हरण मयासिय मजु थका पाप मती तया रात्रिस सुनान मसिक गुप्त ऐना रत्न यागु टिल हिल दक्को जना दण्ड पानी राजा या थास वनि थका वन पापी लोभी जन्पी गब्ले फिङ्गु लस वनि मखो यी त जीवको वचन मन्यसे पाप मार्ग सहने ओठे पाप अन्दाजुया चोम देवदत्त राज्य स लोपतया दर्र पानी राजा या छिवना अलङ्कार दक्व न्यहनीतया ला निपा हाजलप मुसु मुसु निला बिन्टियार हे ससुर दण्ड पानी छल पल यके छु छता बिन्टिया थका निर्लज याना वया छल पोल दयावान जिगु मनोरथ छौ पूर्ण याना बिजाउ सुधासा सुधोधन महाराजा स्वर्गीय जुए जी राजा जी तका छल पोल सिएस्यो अथिय कारणे छल पोल पुत्री यशोधरा छ जिताभ्यो बच्ची राज्य छल पोल यागु जुल यशोधरा यागु यौवन व्यर्थेना विजया मटे यशोधरा या सखी मनोधरा बराबर थाए हे देवदत्त सुमरुगु बखतस बहनी निथ बिजना
काम यागु अग्नि दाहा जुया चौम यशोधरा या त उता ध्याना बिजाऊ थयागु यौवन व्यर्थ छया विजया मध्य थका बारम्बार बिन्ती आगु निन्ती जी छल पलया थासँग वया बिन्ती याना दिपी निमेष यागु मनोरथ पूर्ण याना बिजाऊ थका बिन्ती याना टुटी निपास भोपिया लज्जा मचासे मुसु मुसु झिला झनी चना चन पापिस्त देवदत्त अपाच खलागु नेना दन्द पानी राजा सारे तम्यका मुर्सी फिर फिर खाका आज्ञा डेका बिजार हे पापिस्त देवदत्त थौ छन् त राजकुमार याम किसी यागु किसी स्यागु पाप लगे जुल थौ जा वेटिनी जुल लिपा दिगम्बर जा सक्ता भक्षण याई म जुइटिनी ठिक्का छु जन्म छ संसारे जन्म जुया जुया सार्छु साकी कुल यागु ना म्यु म धन्य धन्य जी जिला त्रिकाल यागु विशुद्ध विशुदिशिया सत्यवादी जुया विजया म सर्वार्थ शुद्ध राजकुमार जित आज्ञा डेका बिजाट देवदत्त बिना अपराध जिम किसी हेत दया स्याटो ठुगु पाप अवश्य थो भोग याई तिनी ठो गन गन वन अन अन उपद्र जग याई बढे जुया चङ्गु साक्य कुल नाश या मतका आज्ञा डे कल ठौजी प्रत्यक्ष मिखा खने डुन हे पापिस्त किसी स्यागु पाप ठौ छ उन्मन्त जुया थठिगु अवस्था जुल अठेन छ भाव्य मफु लिपा सुसु जुइ तिनी ओहो आश्चर्य संसार थैगु विचित्रता पाप थैगु बडा टर थन्यागु थनिए केन छिन मात्र जुल थटे थका लोक पिन्स सिका गब्ले किसी या त घातक या मते किसी या त घातक या म निश्चय न वे जी थका ठुली दया हन दण्ड पानी राजा देवदत्त या त आज्ञा डेका बिजाट हे उन्मत्ता छ हिला मजो नापा किसी सुयाबले निलाचन ठाउन अठे निलाचन निश्चय न थनी निशे छङ्गु ना न्यु यताका नाम प्रख्यात रे थटे धका नाना प्रकार निन्दा एना तम्यका दाजु किजा पिन्त सता आज्ञा डेका बिजट हे फलाना पि छिपी थटे सुदन महाराजा हजुरी वना जी बिन्ती एना हलतका बिन्तिया घटे डासा छल पलय किजायका देवदत्त राजकुमार उन्मत्ता ज्या जिगु छे वया वठो मरेक निन्दाया यज्ञ कथ दिवङ्गर स्वभाव जिया लज्जा शरम धर्मदकोटा कलाना चन थयागुचित भ्रमजुल थ्याट बन्धनी तया बिजाउ अथवा लज्जा मचाम दिवङ्गर या त राज्य पित्ना छया बिजाउ चित्त भ्रमसँग ज्या लज्जा शरम मरेका लाला ठासौ नि छल पलय किजाया क्या जुसेनी छल पलय लज्जा जुल मखुला ठोयाट बन्न चिना बन्दरगार स तया पास्याका बिजाउ ठोजा उन्मन्त जुया चन मनु छया याक्न क्या बिन्तियाट छनन्तु आमकन तया बास याकी धका आज्ञा जुसा थोयाट बन्दने तया बास याना बि धका जी बिन्ती आना हल धका बिन्ती आना का याक्न लिहावा धका अरे यागु खना सुधोदन महाराजा यागु भय न ज्ञाना वाठक दना तम्यका चना चोपी तपिङका नमस्य भइलावन देवदत्त दनावन दना ओङ्गु खना दण्ड पानी राजा आज्ञा देका बिजाट अरे मता ठो छौ बा छन् त माफ जुल जिगु छे वया थिए परया छे वने मध्ये छ जा साके कुल यागु ना मिया मिया जुल थका नाना प्रकार निन्दा एना पिटिना हल पापिस्त देवदत्त दण्ड पानी राजा यागु आशीर्वाद भया ठगु छे लिहा वया सच्ची दण्ड पानी राजा खना तम्यका पाप रूपी टुन्ठी
तुन्ठे चना थोया म्या थोया म्या मचा या त अवश्य न हरण मयासी डोटे मखु नाना प्रकार यागु टिसा वसभ्य बोट याना हे कदाचित बोट मजुसा बलटकार याना साला हे जित सुनाज सहितका अहङ्कार याना चन लिपा मटी चेस्ता दया वैशेली मुसुनिला ठट ठम निन्दा याना डाल टिक्का टिक्का जुगु जन्म विवाह याना बि ढुङ्कुम मिसा यता हान विवाह या थका बोमय छेवना ताहनिम ढिक्का जुगु बुद्धि संसारे विवाह मया निम कन्या बिहा विवाह या त लम्मी छोया ताकी छोई जी जिजा थट विवाह या थका थम कन्या दान फोसेली निन्दा मयैला बिहे थका धाइला ठुगु घारे स धन्न पानी राजा या त छु दोष मरु तर थोजित हुए थका थाल ठोयागु ठोढाउ असल जुल कार्य सिद्ध जुल धासा फटिए जुल कदाचित कार्य विघ्न जुसान ठोए यागु खटका ताइजित दोष दै मगो थनी निसे यशोधरा हात परे मजबुतले वे यागु स्वभाव यानाजे जे वे जोगु सिएउ यामेस्या बिन्ची आसानो राजा राजा जित सुयै मखो थठी जाम यागु खतका ताई च्युता तै मखो अनिचा बहनी यशोधरा या खोपिवना थोया सखी मनोधरा नाप मिलेजिया वे यागु स्वभाव याना खगु मखोगु खलाना दण्ड पानी राजा छोया हलतका रत्नमाला कोखाया बालका हुने शास्त्रले शास्त्रे धैत अगुदो राजा या कारण धर्म याना न वा अधर्म याना न लोकपिंस हेला या सान उन्मत्ता जुल ता सान राज्य भोग या दुसा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष प्यङ्गु पदार्थ फल ल्याडो राज्य हात परे याना राजा जुया सदा धर्म कर्म याना चन्य थका मटी तया गब्ले निभावी गब्ले रात्रि जी थका लोभ रूपी समुद्र दुना ठुक्नु यागु नि छेत दक्षि छेठे जी का चन थो रात्रि जुसेली जब रात्रि जुसेली काम पास चिना तम देवदत्त यसो धराय थास वया कोठाया पिने चना सुख लाना चोठे खु सुख लाना चोन थिए धका चिवा कया चन गठे धासा कामी जन्पिन्छ पिङ्गुजा यही मखो दोष या त गुण धका पापा कर्पिन्छ हेलाया काजी ठुकुनु धासा यसो धराया पाल या ढुङ्का मनोधरा सखी नाप थ स्वामी राजकुमार यागु गुर वर्णन खलाना दिने त मनोधरा या त आज्ञा देका बिजाट हे मनोधरा कनेजा अष्टमी जुल छ पतिजा नापादना मोलो चतुर्वर्ग फल ल्याका मानो श्री कर्णा करुणा मे यागु व्रत या त जी या कच जग छुनिया ज्या यागु गन सामर्थ्य मन्त फलाहार जग याना गुली तागत छु मरु अठे अठे तया गर्व यागु पहाड दु जी ज्या या मफु हे सखी संसारे सार वस्तु छु मरु धन सम्पत्ति रूप यौवन आदि दक्को सदा स्थिर मरु अठे कारणे धर्म तयगु ल्यासे बोले यामा बुढी जियो म बल दै मखो बल मरु सेनी व्रत धर्म आदि छु या फै मखो धर्म या प्रभाव गब्ले भय मरेक निर्माण पर लाना हुने शिस काम भोग यागु तोटा संसार उद्धार या कामना निथ व्रत याना याचक पिन्त फुठे दान प्रदान याना सूची नियम याना वीर्य पराक्रम केना तिरत्न यागु ध्यान याना

कामयना प्राणीपिण्ड अनेक प्रकार यागु दुःख उत्पत्ति याना चन काम भोग गब्ले तृप्त जी मखु चिसवा वो उल टनी थे झ तृष्णा बढे जुया भई अथिया कारण धर्म पाख रूपी अमृत तना भोग प्यास दखो सहयना जन्म जरा व्याधि मरण जुया मायाको मरण जी मायाको मोक्ष भनेको जत्न या कनी अष्टमी नापा दनेमा डेने टेलटका निमेषया खलाना मनोधरा या तथ्यना ठाउन डेने ठका ठिक्कैना चङ्गु बेलस ब्रह्मचित्त जिया सोम देवदत्त मनोधरा या सखी मनोधरा सखी ढ्याङ्गु सोया काम दग्द जिया खोपी दहावना यस धराया यनिचना मती त्रासया मुटु खाखा तुयका चिसयना अवाक्य खलाट हे सधरा छ बो दन्द पानी राजा जित छया हल काम आतुर्ज्या चम छन्त जिगु उटिसियागु अमृत टङ्का पालना या तका भया छ जित भजन या जी कलापी मध्य मुख्यम छ जुल जिगु खुवा छ कसो पूर्ण चन्द्रमा समान ज्या चम जिगु खुवा खना खने मात्र न काम भोग यागु इच्छा मरुम मरुमन काम भोग यागु इच्छा जुया वै जिगु खुवा सोया छित भजन या तका देवदत्त राजकुमार वचन लागुना यशोधरा देवी न्याप निपा निपलाति पाठिना नमो बुधाय नमो धर्माय नमो सङ्गाय नमो नमो तका त्रिरत्न पुकारे याना वाठाको दना जुने यागु कठास द्वहा बिजाना दुःख सहया मफया पोषना ठ स्वामी राजकुमार लुमङका चस्कातया आज्ञा देका बिजाट हाय हाय कस्त ठाउँजी कथिगु वचन न्याने माल पापिस्त किजाभट जिगु न्याने भया अवाक्य ख लावल ढिक्का ठयागु जन्म ठयाट अघोर पाप लाट धका मतितया शोक रूपी विष धा ज्या मूर्छा ज्या भन लिपा चेस्ता दया वैश्यली खाखटुगु स्वर्याना मनोधरा सकियात आज्ञा डेका बिजाट हे मनोधरा याक्न दनावा जित महाकस्त जुल चन्दा देवदत्त जित दुःख बिल जी काम भोग या थका इच्छाइना जनाम मखो केवल राजकुमार टोटा बिजा गुली जग दुःख जियका चनाम ठौ किजाबाट देवदत्त भया अवाक्य कलाट ठुगु पाप ठयाट पाप रूपी क्षिप्त चिना अटल धैगु पातले मठ्यतले सालाइङ्के हे मनोधरा जिगु कारणे देवदत्त दुःख भोग्याइन सदा अन्धकार ज्या चुङ्गु पातले चना चिकुगु खुवाङ्गु दुःख गचे सहिना चुनि जी स्वामी यागु प्रभाव सक्ले सकल लोक पि सुखी भाग्यमानी ज्यागु ज्यागुली स्वर्ग वनी पि गुली मोक्ष वनी वनी पि जुल ठछम जग दाजु किजापि सक्कसिन तोटा सप्तपाल तले वनी न हे सखी जी स्वामी राजकुमार ठोपापिस्त देवदत्त हेट बोड्या फैला म फैला बोड्या म फे हुँ ठयाट ठोये पा पाप याना अगाडस कुटुवना अगाडस कुटुवना डुबे जुया भने किजाबाट दुःख सिका चिस जग सुख भोग याना लोक पिन्छ उपासमयला कलङ्क पिठे जुल थका मटी दुःख तया राजकुमार लुमङका बिला याना बिजार हे स्वामी छलपल याक्न यहाँ बिजाउ जित महा दुःख जुल छलपल यागु दोष किजाबाट किजाबाट देवदत्त नरक भोग याइन छलपल तोटा महुङ्गु जुसा ठोजित थटे ताई मखो हाय दैव ठिक्का ठिक्का जुगु जन्म पूर्व जन्मस जी छु पाप याना वल जुगु कारणे किजाबाट अन्दाज या पाप भोग याइम जुल हाय हाय दैव जी पापी याट काल न गथे महन हे प्राण जी माना चनी मेल जित छ याक्न तोटा हुँ छ्या विलम्ब एना चना छ धास सदा सुख भ या टका इच्छा एना चन दुःख भोग यागु

इच्छा माया अठिन छ्या हे प्राण जिगुरू बालना छ्या गुण ज्ञान दया न छ्या सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार कला जुया न छ्या थटी जागु अपमान स्वयं माना चनी मालो जी माना चनाय छु प्रयोजन मन्ट हाय हाय दैव जी गन भने गर्भवती पुरुष त्वटा ठकुम जी दुखिया त स्ना रक्षा यता का खोया मनोधर या त आज्ञा देका बिजार ए मनोधरा थौ जी दुःख ज्या कठा चना चनाम या त देवदत्त या मखुको खला होल थया त छ भो ड्याना भ्यो थया त नरक भोग या के मते याक्न भो ड्याना धर्म या के धर्म या प्रभाव अवाक्य ख लागु ल्यागु पाप दक्क नाश ज्या हुने ठुगो पाप फुके त झिसन छु धर्म या सुधर्म यासा नरक भोग या म्याक याक्न मच्य भने दै हे सखी जुगु मन या त भो ड्याइमा सक्षम जगु दु मेपी सुमरु सञ्जित अमृत समानगु वाक्य कना बोध यातका यशोधरा आज्ञा दिएको गुना मनोधरा सखी बिन्तिया हे देवी छल पल मती शङ्खातया बिजा मते तैरियाना बिजाऊ जी बिन्तिया गठे ढासा साक्य कुल ध्वंस या व म दुष्ट देव दत्त नर्के वनी मजे अठिया कारण सप्तपाल तका देका त चेपी जा अष्टमी व्रत यानागु यानागु या प्रभाव अकनिष्ठ तैगु भुवन स उनी दै छल पल या स्वामी छल पल या त विवाह या तका रङ्गभूमि स बिजाना आज्ञा देका बिजा त जी न्याना चना जिनाको तहटी कमजुनी अठे अठे जुसान जिके लुमनी छल पल या स्वामी व देव दत्त निम टिसलवागु बैलस राजकुमार तम्यका कमर्जना चाटवाना छेटेन लिपा दया तया बिजागुली प्राण रक्षा जुयावन लोकजनपिन्छ खना सेखी जगका थया पुरुषार्थ छुदुम ढका पुरुषार्थ छुडुम मखो धका सकसिन ठिक्का हानो सिंह हुनु महाराजा यागु धनुक चले यागु सामर्थ मर्या सर्वार्थ सिद्ध कुमार या त धनुक लाना बिल देवलोक पुंस खना सक्ने निलाजन निन्दा या सान लज्जा मचाम थटी जाम पापिस्त या त सुनान छे म्याक ठमन्टु सप्तपातले वनिगु इच्छा याट कुकर्मायना चौमसित या मते थका सुनान गनिमको दुष्ट साहस याट पास यागु इच्छा याना चौम पापिस्त याट अति जामये सहाय प्राप्त जे थोलिसे सदा नापहे चना चुनी गठे ढासा धर्मरूपी बलहीन जुया चौम अन्धा या त थका ढका बल याना छुया थक्या फैमको था आदि आर छु मरु गुछे पौ जग बल्ला के तया छुया बिना था बा अङ्ग यागु आर मरेको फैमको ओठी थ भने मनगु वा मसगु स्थान छ भने त बिना सहाय पासा मरेको गन भने फैमको अथिया निन्ति नापान ठ किसी या त साना शरीर याउ पाप या त ठौन बचन थटी जागु खला नाचौ होल बिना थनी नपी सहाय मरेको सप्तपातले उनी मखो ठुम्स गन गन चौधाई अन अन चनेमा ठुम्स बिउगु वस्तु भोजन यामा दाता हो पिछु कठ उठा तक सहाय मटोटल उठा तक अनय चनाचनीमा थ सहाय न सुनान ब्युगु मखो ठमय देका चन ठोये पासा सप्तपातले यङ्का अन्धा ज्या चङ्गु थासन चिकुक लखस
लखस था स्वाना टग उठे स्थिर तया तय हे सोधरा छल पल नेनागु अपाच खलागु पाप दको जी कुबी देवदत्त थुली धाउ छल पल सप्त पाताले उनी उनी मालिला उनी माली मखो घुमिसिन थाल ओहे उनी भीम सहाय जोसा पिङ्गु थास उनी हे सोधरा छल पल सम्मान गोत्र धका मती शङ्खायना शङ्खायना बिजाट ठुकी जा छु दोष मरो गथे रत्नाकर समुद्रे विष नडु अमृत नडु ओठे संसारे लोक जन्पी गुली उधारियाइपी गुली सहारियाइपी स्वभाव बराबर मजो अथे कारणे मठे शङ्खातया बिजा मटे निशङ्खा निशङ्खायना श्री त्रिरत्नयाउ स्मरण्यना बिजाउ ठुकु पुण्य पाप दखो नाश जुया उनी थका बिन्च्याना हानो देवदत्त पाखे लिसोया ता हे देवदत्त जी बिन्तियानागु ख बिन्तियानागु खला कि मखो छल पल विचारेना बिजाउ छल पल महाज्ञानी छुया निन्ती चित्त प्रमण्याना थन बिजाना लिहा बिजाउ छल पल या पासा धर्मदत्त छु मठाला थयागु उपदेश मन्यसे ब्रह्मचित्तैना बिजाट जी मखु थे ताथे चौसा धर्मदत्त याके न्याना बिजाउ ठयागु वचन लगना याना बिजाया मते ए राजकुमार छा छल पल पाप लाइगु जयनागु जयागु इच्छायना बिजाना छल पल जा कामस लोभ तया अन्दाज या चित्तया त प्रान्तियाना कलङ्क छु मडुगु राजकुले कलङ्क डेकी तेन कलङ्क पिए मते छल पल दाजु सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार लोक रक्षया थका चे पेदल स्त्रीजन पी दखो तोटा बोधि ज्ञान ल्या थका तपवन बिजाट छल पल बिजारेना बिजाउ छल पल किजा बुद्धिमान जुया चौम छल पल थथिगु अवाच्य खलाना बिजाट मे पनि स्त्री हरण या सानो यशोधरा या त या मजु यशोधरा गथिम धासा कल्याणी लोकमाता लोकपिन्त हितयाथका मती तया चोम अचे तया सर्वार्थ सिद्ध राजकुमार स्वयंवर याना ट्याका हम स्वामी भक्ति सर्वज्ञ नाथ बीज धारिना बिजाम सुधन महाराजय प्रेम जुया चोम भौमचा यशोधरा याके छल पल मन गठे वन स्वप्ने नाप माने याना चो या माम ठोयाट सुना भोग या थका मती तय वया सधर्म सुख दको हीन जुया हुने हे राजकुमार छल पल नास्तिक जा मखो साक्य राजाय कुले जन्म जुया बिजाम छल पल नखटिनी बरे जुया ओ साक्य कुल नास्याट नास्याना बिजामटे दुःख कष्ट सियानो तरे या मफुगु सप्त पातले वना तत्काल बास या मालिगु कार्य स उद्योग याना विजया मते जत्न जुक्तियाना लोक नाप मिलेजया मोक्ष वनेगु कार्य स उद्योग याना विजया हुँ थटिगु पाप कर्म यागु मती तल धासा दुर्लभ जुया चोङ्गु मोक्ष फल ल्या फै मखु रसताल कहाँ सप्त पातले ठ्याङ्क कुतु हुने हे देवदत्त तोता मुनि मानिगु राज्य दया नछुया सदा स्थिर मरुगु यौवन दया नछुया केवल पाप जग साधन यागु थोए विचारेना छल पल दाजु गृहस्थिति यागु सम्पत्ति राज्य ऐश्वर्य दको त्यागेना मोक्ष रूपी सम्पत्ति ल्यागु इच्छा हेना ठम सुधा कर्म हेना तपस्याना बिजार ओठे छल पल मोक्ष फल ल्याट सुधा कर्म याना फुसा लोक उद्धार याना बिजाउ मफुसा थमखुनु उद्धार जुया बिजाउ ठुगु कर्म जा जी या फैमुखु धैगु जुसा सदा व्रत याना दान पुण्य याना किसी स्यागु पाप अवाच्य खलानागु पाप तको शोधन याना बिजाउ एम राजा बिगु नरक यागु भय मरुला सुधोधन महाराजा दण्ड मयैला
ठुगु कार्य या ठका मती तया विजया मध्य सहस्र कोटि बिन्ती धका मनोधरा सखी बिन्ती याट मनोधरा यागु वचन जना देवदत्त राजकुमार तम्यका याहुङ्क मिखा कना वा कर कर्ण्या आज्ञा देका विजाट हे मता अति मात्य ज्या चम भाति बरा बरा जान्य बरा चतुर सो स कर्या कर्किया दासी ज्या चौमसिया ख गति जागो भाटो टोटा चानो निन यसो धराया थास चना जा ज्ञाना चौम थन थन जग म चौगु जुसा छन्द गथ्य गथ्य मच्छी पुरे छोयाबी हे मता छित खलाना छ बालागुली अभिमान बढी ज्या चन राजकुले मचुङ्गु जुसा छन्द गतिशिर छेदन याना पुखली कोफाना सप्तपाटले छोयाबी यसो धरायाटन न्या सपना पित छुए सुधन महाराजा स्वर्गे जुए जी जुजु जुए जीवले तिनी छिमेगु छिमेगु वचन याने रसताले पाताले छिपी ओ निला जीव निला उठा चिनी सुए छिम्त सुना रक्षाये आम नेम व्रत रक्षा आम नेम व्रत रक्षा याइला राजा रक्षा याइला पिछु ज्या चम रक्षा याइला सुना रक्षा याई जी तमासा सुए सुए गर्व सम बालक यागु आशा कया माने माने या योग्य ज्या चम जित छिम्स निन्दा याट क्या मचा भुइगु डोची बे छब्ब म्या मचा भुइगु डोची भुइ तिनी क्या मचा हे जुसान जी दे जी देख जुजु जी महो जी समान माग्य मानी सुदो पिछु यागु बीज धका ढालो थयागु फल जी के निनी हे पापी थौ छिम्स धर्मयाना थका अधर्मयाना सत्य वचन याट चुत्था याना जित विपरीत याट छिपी निमेषिन दुख सियुज र जिजा झ करुणा तया रक्षा या ठका वया झ जित हे एला एना निन्दा याट नकटिनी आगु यो भने भाट टोटा वङ्गुली काम रूपी अग्नि दाहाजुया विधवा मिसाथे दुयुगु वस्त्र टिया गर्व पार कुबिया आम्टे दुःख भोग याना चन यसो धराया मति अनेक प्रकार रसरङ्ग याना अधरा मृत पान यागु इच्छा दु नापा रङ्गभूमि स रङ्गभूमि न जिगु दिव्य देह खना जिके वेटका इच्छा याना चन लिपा सुधन महाराजा तमे के धका ज्ञाना मय सान पिछु याट वर्णन याट अठे जुसान लज्जा चाया चोम यसो धरा याट सधर्म न प्रतिपाल याना या थका माने माया तया वया झ जग जित नुग्ल सहाया मजु कठ मुटुलाना ढिक्कार याना अपमान याट ठौ छिम्सहे हेला या सान जी सहया टुन गुखुनु जी राजा जी उखुनु टिनी छिमेगु तमासा सुए छजा बेस्या मखुला बेस्या ज्या खगु मखुगु खलाना राजा याट बसेना तल राजा याट चुक्रियाना सक शिवे मालिक जुया राजकुले जना राजा यागु अधिकारी जुया जित पिछुयाना पिठु छु म छ जुल जिपी सक्ले छङ्गु अडा अडा उनी चन्यगु जुल जित सप्त पादले छोइ म छ जुल मखु धैगु जोसा छन्द निष्कण्ठ अकनिष्ठ भुवने छोयाबी हेमता छ जग मूर्ख ज्या मगा जित नाप मूर्ख टका थाल यसो धरा न मूर्ख भाटो टोटका निराश एना स्वस्थ चित्त एना चन लिपा छुछु जुई तिनी धका लिपा छुछु जुई तिनी धका लिग्या म काम मूर्ख या त जी छुया हे रन्डी छजा जित थटे धाल छङ्गु यौवन सदा स्थिर जनी मखु यौवन हिन जुया भने उ सौन्दर्य न हिन जुया भने हे मूर्ख लिपाजी जुजु जीवले छिपी निमेषित पश्चाताप चाया मिखास खोबी तया बिन्तिया माली चिनी उख्नु चिनी गठे थौ जी प्रतिज्ञा याना ओठे पुरे यासी टोटे मखो
हेरन्डी छङ्गु वचन सहयाटुन स्वे स्वेका छन्दटका